0: Listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Hindi.
2: Mobile speed cameras ke liye baaye mude. Police motorcycle unit ke liye daaye mude. जीवन के लिए खतरनाक दुर्घटना की स्थिति में सीधे आगे जाना जारी रखें।
3: आपकी छुट्टी कैसे खत्म होती है यह आप पर निर्भर है। अगर आप तेज गाड़ी चलाते हैं चाहे थोड़ा सा भी तो यह गलत बात है। TAC की ओर से एक संदेश।
4: प्राउड स्पॉन्सर ऑफ 3ZZZ 92.3 FM।
5: पेश है साइंस वर्क्स में नई और जीवंत प्रदर्शनी कलर सी द वर्ल्ड इन अ न्यू लाइट। यहाँ देखें चमकते खनिज ट्रिकल भ्रम और बच्चों के लिए रोमांचक हाथों से किए जाने वाले व्यवहारिक प्रयोग, साथ ही बड़ों के लिए भी भरपूर आनंद। रंगों को देखें रोशनी के साथ खेलें और इन सब से आपको विस्मित करने वाली प्रदर्शनी अब साइंस वर्क्स में खुल चुकी है। टिकट बुक करें museumsvictoria.com.au।
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM. If you need urgent healthcare now, but it's not life-threatening, get free support with Virtual Emergency Department. Speak to highly skilled emergency doctors and nurses by video call using your mobile or computer. It's free to use, available 24/7, and there's no appointment, GP referral or Medicare card required. For an emergency video consultation, search Virtual Emergency Department or visit ved.vic.gov.au. Authorised by the Victorian Government. One Treasury Place, Melbourne.
4: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
2: Mobile speed cameras ke liye baaye mude. Police motorcycle unit ke liye daaye mude. Jeevan ke liye khatarnak durghatna ki sthiti mein seedhe aage jana jari rakhein.
3: Aapki chutti kaise khatam hoti hai? Yah aap par nirbhar hai. अगर आप तेज गाड़ी चलाते हैं चाहे थोड़ा सा भी तो यह गलत बात है। TAC की ओर से एक संदेश।
4: प्राउड स्पॉन्सर ऑफ 3ZZZ 92.3 FM।
5: मेलबर्न म्यूजियम की नई भव्य प्रदर्शनी रोम एम्पायर पावर पीपल अब खुल चुकी है। ऑस्ट्रेलिया में पहले कभी नहीं देखे गए 180 अद्भुत ऐतिहासिक अवशेषों के साथ जानिए ऐतिहासिक रोम की विलासिता, ग्लैडिएटर्स का रोमांच और आम रोम के लोगों का जीवन। मूर्ति और मोज़ेइक से लेकर आभूषणों और रोजमर्रा की वस्तुओं तक प्राचीन रोम की संस्कृति और इतिहास को एक बिल्कुल नए अनुभव के साथ जानें। बुक करें रोम एम्पायर पावर पीपल museumsvictoria.com.au।
0: प्राउड स्पॉन्सर ऑफ 3ZZZ 92.3 FM।
6: ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰਾ ਵੈਲੀ ਵਾਟਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੈਚਮੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਜਾਂਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਟੂਟੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੂਟੀ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਧਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਬੂੰਦ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ, ਯਾਰਾ ਵੈਲੀ ਵਾਟਰ।
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
5: सही सेवाएं उपलब्ध हैं, सही जानकारी भी उपलब्ध है, लेकिन हमारा समुदाय हमेशा उन्हें ढूंढ नहीं पाता। डाइवर्सिबिलिटीज इसे बदल रहा है। एक निःशुल्क बहुसांस्कृतिक प्लेटफॉर्म जहां आप अपनी भाषा में सेवाएं, जानकारी, कार्यक्रम और समुदाय से जुड़ने के अवसर पा सकते हैं। इस महीने निःशुल्क जुड़े और $50 का वेस्टफील्ड वाउचर जीतने का मौका पाए। डाइवर्सिबिलिटीज हम सभी के लिए 1300-013-727 पर कॉल करें या अधिक जानकारी के लिए 3ZZZ.com.au पर जाएं।
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
7: Are you disaster ready? Australia Post is partnering with Australian Red Cross to help households prepare for the unexpected. Taking a few simple steps today can make a big difference tomorrow. Get started at redcross.org.au/prepare.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM. If you need urgent healthcare now, but it's not life-threatening, get free support with Virtual Emergency Department. Speak to highly skilled emergency doctors and nurses by video call using your mobile or computer. It's free to use, available 24/7, and there's no appointment, GP referral or Medicare card required. For an emergency video consultation, search Virtual Emergency Department or visit ved.vic.gov.au. Authorised by the Victorian Government. One Treasury Place, Melbourne.
4: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
8: अगला कार्यक्रम हिंदी में प्रसारित होगा। 1992 से चला आ रहा, 2025 में ऑस्ट्रेलियन नेशनल बेस्ट एथनिक प्रोग्राम से सम्मानित भारतीय और ऑस्ट्रेलियन संस्कृतियों को जोड़ता मेलबर्न वासी भारतीय प्रवासियों द्वारा रचित दिलों दिमागों और मुद्दों को जोड़ता आपके साथ गाता गुनगुनाता हर सप्ताह आता आपका हिंदी का गीतांजलि कार्यक्रम एक बार फिर आ गया है। अधिक जानकारी के लिए www.3ZZZindian.org। आइए मिलते हैं आज के कार्यक्रम से।

0: पिछले तीन दशकों से आपका अपना इंडियन प्रोग्राम गीतांजलि कम्युनिटी रेडियो स्टेशन 3ZZZ 92.3 FM का एक अहम हिस्सा है। 3ZZZ.com.au वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन मेंबरशिप लेकर अपना सपोर्ट आपके लोकल इंडियन रेडियो स्टेशन को दीजिए। एनुअल मेंबरशिप $16, सीनियर या कंसेशन कार्ड होल्डर्स मात्र $11। योर सपोर्ट इज द लाइफलाइन ऑफ दिस स्टेशन। थैंक यू।
1: गीतांजलि के सभी श्रोताओं को राकेशा पल्लवी का प्यार भरा नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: तो अभी स्प्रिंग सीजन चल रहा है और मेलबर्न में सभी बाग और बगीचे फूलों से महक रहे हैं और मेलबर्न के कई पॉकेट्स तो लग रहे हैं कि जैसे हम जापान आ गए, जैसे जापान लोग जाते हैं ना चेरी ब्लॉसम के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारे खूबसूरत पॉकेट्स हैं जिन्होंने मेलबर्न का वातावरण बहुत सुसज्जित किया हुआ है। और आज AFL 40 फाइनल भी था और सारा ऑस्ट्रेलिया 2-5 अपने टीवी सेट से जुड़ा हुआ था। एकदम कोई मेरे ख्याल से उठ नहीं रहा था, इतना रोमांचक मैच था। तो क्या हुआ?
2: मैच एक्चुअली बहुत ज़्यादा रोमांचक था। मतलब आखिरी के 4 मिनट तक तो पता ही नहीं लग रहा था कि कौन सी टीम जीतेगी। मतलब आखिरी के मिनट तक नहीं पता लग रहा था। मैच ख़त्म होने के 4 मिनट पहले तक फ्रीमेंटल डॉकर्स 17 पॉइंट से लीड कर रहे थे।
1: अच्छा।
2: और आखिरी के 4 मिनटों में ब्रिस्बेन ने 4 गोल करके 7 पॉइंट से जीत हासिल करी। मतलब एक बहुत ही रोमांचक मैच था।
1: तो मेरे ख्याल से
2: किसी भी स्टेज पे मतलब पॉइंट डिफरेंस 6-7 पॉइंट से ज्यादा नहीं था दोनों टीम के बीच में, एकदम नेक टू नेक था। तो मतलब बहुत ही रोमांचक मैच था, इसीलिए कोई उठ भी नहीं पाया अपनी सीट से आज।
1: हाँ, और मतलब मेरे को लगता है कि मतलब जो टीम जीती है खैर वो तो बहुत ही सेलिब्रेट कर रही है, पर जो हारी है वो भी मतलब लास्ट तक काफी आशा
2: के साथ। डॉकर्स काफी डिजर्विंग थे क्योंकि पूरे मैच में उन्होंने काफी डोमिनेट किया था। आखिरी के 4 मिनट में कुछ उनको हो गया और वो मतलब एक्चुअली उनको कुछ नहीं हुआ, ब्रिस्बेन ने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया और 4 गोल करे आखिरी के 4 मिनट में। तो दैट वाज समथिंग स्पेशल। Yeah.
1: पर चलो ऐसी बहाने सारे जितने भी दर्शक हैं उन्होंने तो बहुत ही मज़े लिए। और आज का जो ये 40 मैच था तो उसकी शुरुआत कायली ने की थी। बहुत ही उनका मनमोहक कार्यक्रम रहा, लाइक बहुत अच्छे उन्होंने गाने पेश किए, पुराने गाने। हाँ, हमें बैक टू मतलब हमारा 90s हम चले गए थे। तो बहुत ही अच्छा लगा। और हाँ, हम तो बात करते रह गए। हमारे स्टूडियो में आज हमारे साथ एक गेस्ट हैं, तो कल्याणी वत्सला हमारे साथ आज स्टूडियो में। हाँ, हम तो बात करते रह गए। हमारे स्टूडियो में आज हमारे साथ एक गेस्ट हैं, तो कल्याणी वत्सला हमारे साथ आज स्टूडियो में आई है। वो एक

0: से एक ये यही शब्द निकल रहा है, हनुमान अंश देखी कि नहीं। और यदि जिसने देख लिए वो आपको यही बता रहा है कि मैंने तो देख लिए, बहुत ही अच्छी फिल्म है, आप भी जाकर देखिए। तो पहले तो मैंने बहुत लोगों से सुना कि क्या फिल्म है, देख बस कोई धार्मिक फिल्म होगी, क्या करना है देख के। पर मेरे ख्याल से वर्ड ऑफ माउथ से ही ये फिल्म का इतना प्रचार हुआ है और सुना है कि बहुत ही अच्छे ढंग से बनाई गई है।
1: तो एक्चुअली इस फिल्म की लागत जो थी खाली 2 करोड़ थी और ये फिल्म ऑलरेडी 350 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है वर्ल्ड वाइड।
0: अच्छा, तो मैं अपने श्रोताओं को बता दूं कि हमारा स्टूडियो का जो फ़ोन लाइन है वो खुला हुआ है, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं और हमें कुछ जानकारी देना चाहे या फिर हमसे ऐसे ही बातचीत करना चाहे तो 9415-1923। तो हमारा स्टूडियो का नंबर मैं फिर से बता देती हूँ, 9415-1923। तो हनुमान अंश के बारे में कुछ बताने से पहले उसका एक गीत सुनते हैं।

तो इस फिल्म के बारे में जो मुझे पता चला है वो मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। तो ये फिल्म बहुत ही कम लागत में बनी थी, मेरे ख्याल से सिर्फ 2 करोड़ की लागत में बनी थी और 300 करोड़ से अधिक का बिजनेस कर चुकी है। ये फिल्म लक्ष्मण नारायण शर्मा नीम करौली बाबा के चमत्कारी जीवन और उनकी शिक्षाओं की कहानी है। विशाल चतुर्वेदी द्वारा लिखित और निर्देशित हनुमान अंश नीम करौली बाबा के जीवन और उनकी विरासत से प्रेरित एक बदलाव लाने वाले सफ़र को दिखाती है। नीम करौली बाबा एक आध्यात्मिक हस्ती थे जो प्यार करुणा और भक्ति की अपनी शिक्षाओं के लिए जाने जाते थे। वो एक ऐसी दुनिया से परिचय कराते हैं जो आंतरिक जागृति और आस्था की शक्ति का केंद्र है। और फिल्म हनुमान अंश आस्था विनम्रता और असीम प्रेम की यात्रा पर आधारित है। यह फिल्म का मकसद उस संत की कहानी को सामने लाना है जो आज भी लोगों के दिलों में बसे हैं और उनका संदेश उनके बीच में गूंजता है। उनकी शिक्षाओं ने कई पीढ़ियों के लोगों के जीवन को संवारा है। फिल्म की कहानी के अनुसार बाबा को एक ऐसे संत के रूप में दिखाया गया है जो सत्ता राजनीति भौतिक सुख सुविधाओं और प्रशंसा से दूर रहते हैं। उनका सरल संदेश ही इस कहानी का आध्यात्मिक आधार है। फिल्म बनाने वालों का कहना है कि ये फिल्म भारत की संत परंपरा का जश्न है जो आध्यात्मिकता और मानवता के बीच में कभी न खत्म होने वाले रिश्ते को दिखाता है। भारत की धरती से लेकर दुनिया भर के जिज्ञासुओं तक नीम करौली बाबा की कृपा भौगोलिक सीमाओं से कहीं आगे जा पहुंचती है। उनकी शिक्षाओं और मौजूदगी ने दुनिया भर की मशहूर हस्तियों बिजनेसमैन कलाकारों खिलाड़ियों और लाखों भक्तों को प्रेरित किया है, जिसमें स्टीव जॉब्स मार्क जुकरबर्ग जूलिया रॉबर्ट्स विराट कोहली और अनुष्का शर्मा जैसे नाम शामिल हैं जो बाबा के आध्यात्मिक प्रभाव से गहराई से जुड़े रहे हैं। स्टीव जॉब्स का भारत आना और कैची धाम से उनका जुड़ाव अक्सर उनके जीवन का एक अहम आध्यात्मिक मोड़ माना जाता है। वही जूलिया रॉबर्ट्स ने भी नीम करौली बाबा की तस्वीर देखने के बाद हिंदू धर्म के प्रति अपना झुकाव महसूस करने की बात कही है। और मार्क का कैची धाम जाना और विराट कोहली अनुष्का शर्मा का बाबा के आश्रमों में जाना भी काफ़ी चर्चा में रहा है। और इनफैक्ट आज ही मेरी किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि एक बार वे बाबा जी से मिलने के लिए उनके आश्रम जाने वाले थे, तो उन्होंने सोचा कि बाबा के आश्रम में तो पता नहीं कोई खाने पीने की सुविधा होगी कि नहीं और चाय पीने का मन हो रहा है तो वहाँ चाय मिलेगी कि नहीं, तो चलो पहले चाय पी के जाते हैं। फिर वे जब बाबा के आश्रम में पहुँचे और उनसे मुलाकात हो गई है जब निकलने लगे, तो फिर बाबा ने अपने शिष्य को कहा कि ये जो हमारे भक्तजन आए हैं उनको चाय पिलाए बिना मत जाने देना। तो मतलब वो बाबा को पता चल गया था कि भक्तजनों ने ऐसा अपने मन में सोचा था और उन्होंने सोचा था चाय नहीं मिलेगी, पर बाबा को इसके बारे में पहले से ही पता चल गया था। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो लोगों के साथ घटी हैं और लोगों का बाबा के ऊपर बहुत ही विश्वास बढ़ा है। तो मेरा भी बहुत मन है कि मैं इस फिल्म को देखूं। अभी तक तो मैं देख नहीं पाई हूं, पर मेरे ख्याल से मेलबर्न में बहुत सारे थिएटर्स में ये फिल्म लगी है, तो यदि किसी श्रोताओं को देखने का मन हो रहा है तो ज़रूर से देख सकते हैं। मेरे ख्याल से हॉइट्स एंड विलेज सभी जगह इनके शोज़ चल रहे हैं। तो क्यों ना एक दूसरा गाना सुनते हैं इस फिल्म का, सुना है कि बहुत ही खूबसूरत है।

0: बम भोले भोले बम भोले भोले बम भोले।
1: हाँ श्रोताओं, अभी अभी बस हमारे पास एक फरमाइश आई है। सरिता जी हमारे से गीत सुनना चाह रही हैं। मैं शायर तो नहीं, तो चलिए आपकी फरमाइश में ये गीत।

0: हाय, तो जैसा कि मैंने बोला था कि हमारे स्टूडियो में आज एक गेस्ट मौजूद हैं, तो कल्याणी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू।
0: तो आप यहाँ एक स्टूडेंट के रूप में आई थी और आप हमारे श्रोताओं के साथ कुछ अपने बारे में शेयर करें कि आप यहाँ मेलबर्न में या ऑस्ट्रेलिया में कब आई और किस कोर्स में आप पढ़ाई करने के लिए आई थी।
1: हाँ, तो थैंक यू मुझे यहाँ बुलाने के लिए। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपनी जर्नी आप सबके साथ शेयर करने के लिए। मैं मेलबर्न फेब्रुअरी ऑफ 2024 में आई थी। मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न से मास्टर्स ऑफ क्रिएटिव आर्ट्स थेरेपी की पढ़ाई करी। ये कोर्स एक अलग तरीके का कोर्स है जिसमें हम कन्वेंशनल साइकोथेरेपी के आगे या उससे हट के और किस तरीके से लोगों तक अपनी फीलिंग्स के बारे में बात कर सकते हैं या फिर अपने मेंटल हेल्थ इश्यूज़ या चैलेंजेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। कन्वेंशनल साइकोथेरेपी बहुत टॉक बेस्ड होती है और बहुत सारे लोगों के लिए, जैसे जिनको सीवियर ट्रॉमा होता है या जिनको लैंग्वेज इश्यूज़ होते हैं या बहुत छोटे बच्चे जिनकी वो वोकैबुलरी इतनी अच्छी नहीं होती है कि वो अपने बारे में या अपनी फीलिंग्स के बारे में या अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बहुत अच्छे से बात कर सकें, उनके लिए आर्ट या म्यूज़िक या डांस बहुत ही अच्छा तरीका होता है बात करने के लिए या अपनी बात दूसरों से कम्युनिकेट करने के लिए। मेरी ट्रेनिंग में मैंने यही सीखा है कि बात करना हम लोग बहुत देर बाद सीखते हैं अपने लाइफ में। हमारा सबसे पहला कम्युनिकेशन का ज़रिया हमारी बॉडी होती है। जब हम एक माँ के पेट में होते हैं तभी भी हम अपने हाथ पैर हिला के अपने मदर से कम्युनिकेट कर सकते हैं, और बॉर्न होने के बाद भी हमारी बॉडी हमारा मेन सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन होती है। हम लैंग्वेज और वर्ड्स बहुत समय बाद डेवलप करते हैं और सीखते हैं, पर बड़े होते होते हम लोग अपने शरीर को सिर्फ एक बहुत ही यूटिलिटेरियन तरीके से यूज़ करना याद रख पाते हैं और हम कहीं ना कहीं हर चीज़ में सीरियसनेस और सेंस ढूंढने लगते हैं, और हाँ, शायद उसी वजह से कई बारी हमारे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको हम ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं।
0: नहीं, आपका कोर्स तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है, अभी उसके बारे में और हम डिटेल में बात करते हैं। अभी किसी श्रोता जन का कॉल आ रहा है तो आप हमें फिर से कॉल करिएगा, क्योंकि हम बातचीत के दौरान आपका कॉल नहीं ले सकते हैं। तो अभी बीच में हम गाना बजाएंगे, तब आप हमें फिर से कॉल करिएगा। तो कल्याणी, आपका कोर्स तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है और मेरे ख्याल से आज के जीवन में बहुत ज़्यादा रेलेवेंट भी है, क्योंकि जहाँ आपने बताया कि कम्युनिकेशन और दूसरी तरफ मेंटल हेल्थ, तो मेरे ख्याल से मेंटल हेल्थ का एक बहुत बड़ा कारण है कि कम्युनिकेट नहीं कर पाना, क्योंकि लोग जब नहीं कम्युनिकेट कर पाते हैं तभी वो अंदर ही अंदर में कैसे घुटते जाते हैं। तो उसके बारे में मतलब तुम्हारा क्या विचार है, मतलब आपके स्टडीज़ में मेंटल हेल्थ काफ़ी सामने आया?
1: जी बिल्कुल। सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने महसूस करी पिछले कुछ सालों में वो ये है कि हम सब इतने ज़्यादा फ्यूचर ओरिएंटेड हैं कि हम प्रेजेंट में रहना बहुत बार भूल जाते हैं। हम हमेशा
0: बिल्कुल सही
1: आगे की चिंता या पीछे के रिग्रेट्स में जीते रहते हैं, बट उसके चक्कर में हम अपने प्रेजेंट को भूल जाते हैं। और जब मैं यहाँ आई थी तो मेरे लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो यहाँ की लाइफस्टाइल के साथ कोप करना था, क्योंकि इंडिया में जब मैं थी तो मेरे आसपास मेरे पेरेंट्स थे, अगर मेरे पेरेंट्स नहीं थे तो मेरे बहुत सारे दोस्त थे जो सब सेम लैंग्वेज बोलते थे या जिन लोगों के साथ बड़े हुई थी मैं या जिन्होंने सेम चीज़ें एक्सपीरियंस करी थी एक कंट्री के अंदर। यहाँ आने के बाद वो चीज़ मुझे बिल्कुल मिल नहीं पा रही थी काफ़ी समय तक। जो सेंस ऑफ कम्युनिटी इंडिया में था वो यहाँ पे महसूस करना बहुत डिफ़िकल्ट था, और इसी के चलते मैंने बहुत स्ट्रगल किया था इनिशियली. मैंने यूनिवर्सिटी की काफ़ी सर्विसेज को इस टाइम पे यूज़ किया था, जिसमें कि मैंने यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग और मेंटल हेल्थ सर्विसेज को यूज़ किया था, पर उसके साथ साथ मैंने बहुत सारे ग्रेजुएट ग्रुप्स और यूनिवर्सिटी ग्रुप्स को ज्वाइन किया था, ताकि एक तरीके से मैं लोगों के साथ रहूं. और मुझे ये एहसास काफ़ी देर बाद हुआ था अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ के, पर अगर मैं पहले से ये चीज़ सोचती तो शायद मैं इतनी उदास नहीं रहती अपने फर्स्ट ईयर में. पर मैं चाहती थी कि मेरा जो एक्सपीरियंस इंडिया में था या जैसी मेरी लाइफ इंडिया में थी, मैं उसको यहाँ रेप्लिकेट कर पाऊँ. पर मैं ये बहुत देर बाद समझ पाई कि मैं यहाँ उसको रेप्लिकेट नहीं कर सकती हूँ, पर मैं यहाँ पे अपने लिए एक लाइफ बिल्ड कर सकती हूँ, क्योंकि जो अभी है वो वहाँ पे नहीं था और जो वहाँ पे है वो यहाँ पे नहीं हो सकता. पर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कम्युनिटी नहीं क्रिएट कर सकती थी. तो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट स्टूडेंट एसोसिएशन के साथ में एक वेलबींग इनिशिएटिव भी स्टार्ट किया था अपने सेकेंड ईयर में.
0: अच्छा.
1: जिसमें हम लोग जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स थे, जो इंटरनेशनल ग्रेजुएट स्टूडेंट्स थे, जो सब काफ़ी हद तक यही एक्सपीरियंस कर रहे थे कि उनको वो घर जैसी फीलिंग यहाँ नहीं आ पा रही है,
0: बिल्कुल.
1: उनके लिए एक जगह थी जहाँ पे सब आ सकें और बिना किसी एक्सपेक्टेशन से, बिना किसी परफॉर्मिंग के प्रेशर से यहाँ पे रह के अपने आप के साथ बस कुछ समय बिता सकें. और वो जो कि मैं पहले कह रही थी, प्रेजेंट में रहना, उसका एक्सपीरियंस कर सकें. वो वर्कशॉप काफ़ी सक्सेसफुल रही थी, हमने दो सेमेस्टर्स तक वो काम भी किया था, और उसके बाद मेरी यूनिवर्सिटी लाइफ ख़त्म हो गई और मैं ग्रेजुएट हो गई. और
0: पर मेरे ख्याल से वही मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ठीक है, आपकी जर्नी में आपने पहले स्ट्रगल किया, फिर आपने अपने लिए क्रिएट किया, तो अभी जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहोगे इसी सिचुएशन में है कि वो यहाँ आ गए हैं पर उन्हें घर जैसा नहीं लग रहा है, तो मतलब थोड़ा वो एक कश्मकश में है, तो उनको आप क्या बोलना चाहोगे?
1: जैसे कि मैंने कहा, जो घर की बात है वो तो कभी यहाँ पे फील नहीं हो सकती, क्योंकि हम अपनी इतनी लाइफ वहाँ गुजार के आए हैं, तो यहाँ पे कभी वैसा तो नहीं लगेगा, बट हम यहाँ पर अपनी लाइफ बिल्ड कर सकते हैं. तो उसके लिए हम अपने आप को हर जगह एक्सपोजर दें, या हम उन एक्सपीरियंसेस के लिए हाँ कहें जिनसे हम शायद थोड़ा कतराते हों, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, हम किसी चीज़ में अच्छे नहीं होंगे या हम किसी चीज़ को नहीं कर पाएंगे ढंग से
0: जी.
1: पर कम से कम हमें वो एक्सपीरियंस मिलेगा और हमें अभी में रहने का जो एक्सपीरियंस है वो मिलेगा. उसके अलावा अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके पास बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं कि यूनिवर्सिटी आपके लिए बहुत कुछ करती है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि जो आप ढूंढ रहे हैं वो आपको यहाँ नहीं मिल पा रहा है, तो आप उसको खुद भी बनाने की कोशिश कर सकते हैं.
0: आप जा सकते हैं वहाँ पे, मेरे ख्याल से कोऑर्डिनेटर्स होंगे, आप उनको बोल सकते हैं कि
1: हाँ,
0: मुझे ये चीज़ करना है, और वो मेरे ख्याल से बहुत आसानी से आपको करने देते हैं.
1: हाँ, बहुत आपको सपोर्ट करेंगे. यहाँ पे मैंने एक चीज़ सबसे ज़्यादा सीखी है कि लोगों को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपने जो काम किया है वो कैसे आप उसको सक्सेसफुली किया है आपने, एज लॉन्ग एज आपने एथिकली अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया है, आप किस तरीके से वहाँ तक पहुँचे हैं उससे ज़्यादा किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है. वो सेंस ऑफ एजेंसी और वो सेंस ऑफ लीडरशिप आपके अंदर आ जाती है, आपको आपके ऊपर सब ट्रस्ट करते हैं कि आप एज लॉन्ग एज आप रिजल्ट्स दे रहे हैं आप ढंग से वो कर रहे होंगे. ये चीज़ इंडिया में मुझे थोड़ी महसूस नहीं होती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि एक तरीके से मुझे सब करना है, और अगर मैंने एक स्टेप मिस किया तो बहुत उससे कुछ गलत हो जाएगा
0: जी.
1: पर यहाँ आके यूनिवर्सिटी के साथ काम करने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि आप जैसे सोच रहे हैं आप उसके ऊपर अगर फेथ रखेंगे, या आप ये सोचेंगे कि हाँ अगर मैं ये सोच रही हूँ और मैं ये कर सकती हूँ, तो सबसे बड़ा चैलेंज आप ऑलरेडी ओवरकम कर सकते हैं, क्योंकि आपका सबसे बड़ा जो ऑब्स्टिकल होता है
0: जी.
1: वो आपके मन में ही होता है. और यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा सपोर्टिव भी हैं. तो अगर आपको कुछ लग रहा है कि आपको किसी चीज़ की कमी महसूस हो रही है, तो आप एक प्लान बनाइए और किसी यूनिवर्सिटी स्टाफ मेंबर से बात करिए, और आप डेफिनेटली उसके लिए कुछ कर सकते हैं.
0: नहीं, अभी अभी हम बातचीत को एक मिनट रोक के एक हम
2: हमारे पास एक फरमाइश आई है. डॉक्टर नरेश ने एक फरमाइश की है और वो अपनी वाइफ को एक गाना डेडिकेट करना चाहते हैं, तो क्यों ना उनकी फरमाइश का गाना सुनते हैं.
0: यदि कोई श्रोताजन हमें अभी इस बीच कॉल करना चाहे तो कर सकते हैं.

0: हाँ तो जैसा बात कर रहे थे तुम्हारे से कल्याणी, तो अभी मैंने सुना है तुम कोई वर्कशॉप्स भी कर रहे हो। नहीं
1: जी, तो अभी मैं वही जो मैंने यूनिवर्सिटी के साथ किया था, एक स्पेस क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ जहाँ पे लोग आके बस अभी इस वक्त में रह सकें और बिना किसी प्रेशर के या बिना किसी एक्सपेक्टेशन के बस अपने साथ, अपने बॉडी के साथ, अपने माइंड के साथ रह सकें। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये एक मेडिटेशन का तरीका भी है, पर कई बार ये ऐसा होता है कि हम मेडिटेशन सुन के सोचते हैं कि ओ हमें एकदम शांत रहना होगा या हमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है इस समय, पर कई बार हमारे ख्याल ओवरटेक कर लेते हैं। जो मेरा वर्कशॉप का तरीका है या स्ट्रक्चर है वो यही तरीके से है कि आप अपने थॉट्स को सप्रेस करने की कोशिश ना करें, बस उनको एक्सप्रेस करने की कोशिश करें। और यही काम मैं कर रही हूँ एक छोटे से इनिशिएटिव द प्ले प्रोजेक्ट के नाम से।
0: अच्छा।
1: और मैं अभी तो बहुत रेगुलर वर्कशॉप्स नहीं कर रही हूँ, पर महीने में एक बार करने की कोशिश करती हूँ। इसके साथ ही साथ मैं एक काउंसलिंग एजेंसी जिसका नाम है योर पाथ काउंसलिंग के साथ में काउंसलर का काम भी कर रही हूँ, जहाँ पे उस ऑर्गेनाइजेशन का यही एक बिलीफ है कि हर इंसान की जर्नी अलग होती है और हर इंसान का रास्ता भी अलग होता है उस जर्नी के लिए। तो वहाँ पे हम अलग अलग तरीके से जो भी इंसान के लिए बेस्ट हो या जो भी आप समझें आपके लिए बेस्ट है उस तरीके से आपको सपोर्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं ये इनिशिएटिव्स के साथ काम कर रही हूँ। और
0: तो यदि कोई मतलब आपका वर्कशॉप को ज्वाइन करना चाहे तो कैसे, मतलब क्या, कैसे सर्च कर सकते हैं
1: आप? द प्ले प्रोजेक्ट मेलबर्न के नाम से इंस्टाग्राम या फेसबुक पे ढूंढ सकते हैं। उसके अलावा आप योर पाथ काउंसलिंग के बारे में गूगल करके देख सकते हैं, या फिर आप सिर्फ मेरा नाम कल्याणी वत्सला लिंक्डइन पे या गूगल पे सर्च करके मुझसे खुद डायरेक्टली बात कर सकते हैं, और मैं बहुत खुश होंगी आपकी मदद करने के लिए।
0: नहीं तो बहुत अच्छी बात है। और मेरे ख्याल से जो ये बता रहे थे ना कि मतलब जो वर्कशॉप है उसमें मतलब मेडिटेशन जैसा है, तो मतलब इसमें ऑब्वियसली म्यूज़िक होगा कि म्यूज़िक नहीं होता है? कि ये एक मतलब एक्टिव है, लाइक पैसिव नहीं है। मेडिटेशन में हम बैठ जाते हैं, पर इसमें क्या डांस करते हैं या मूवमेंट करते हैं?
1: ये हर वर्कशॉप के साथ अलग होता है। और अगर आपको ये एक्सपीरियंस करना है तो आपको डेफिनेटली अटेंड करनी चाहिए एक वर्कशॉप। पर ज़्यादातर स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है कि मैं मिलती हूँ लोगों से, क्योंकि ये क्लोज्ड ग्रुप नहीं है। अगर क्लोज्ड ग्रुप होता मतलब कि एक सेम सेट ऑफ पीपल हर बार मेरे से मिलते ऑन ए रेगुलर बेसिस, तो फिर उसको हम अलग तरीके से आगे लेके जाते। पर क्योंकि इसमें हर बार कहीं ना कहीं से कोई न्यू लोग आते हैं, तो हर सेशन में मैं पहले एक इंट्रोडक्शन रखती हूँ, एक छोटा सा आइस ब्रेकर रखती हूँ, और फिर देखती हूँ अगर कोई चाहे किसी थीम को एक्सप्लोर करना, या अगर मैंने पहले से किसी थीम के बारे में प्रमोट किया होता है कि जैसे हम आज कल्चरल डिफरेंसेस के बारे में एक्सप्लोर करेंगे, या आज हम सेल्फ वर्थ के बारे में एक्सप्लोर करेंगे, तो उससे रिलेटेड मैं एक्टिविटीज़ सोच के रखती हूँ। कई बार ही उसमें हम म्यूज़िक यूज़ करते हैं जो कि ऑलरेडी रिकॉर्डेड होता है, या कोई सॉन्ग यूज़ करते हैं, बट कई बार ही हम लोग उस सेशन में भी म्यूज़िक बनाते हैं अपने हाथों को क्लैप करके, चुटकी बजा के, या पैरों को टैप करके, या मुंह से सीटी बजा के, या हम करके। और कई बार वो भी एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक एंड में एक छोटा सा प्रोडक्ट मिलता है हमको जो हम सब ने खुद बनाया होता है। तो हर सेशन में हम अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, कोई दो सेशन कभी सेम नहीं होते। अगर हम कोशिश भी करें उनको सेम रखने की तभी भी नहीं होते,
0: क्योंकि लोग भी अलग हैं और मतलब वो मेरे ख्याल से सब चलता होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है, मुझे तो एक सेशन ज़रूर अटेंड करना होगा। तो मेरे ख्याल से हमारे श्रोता भी जो सुन रहे होंगे उनको भी बहुत एक्साइटमेंट होगा। तो यदि आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. हमारे घड़ी की सुइयां तो बहुत आगे बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रही है, पर हमारे पास एक और फरमाइश आई है. मंजुला फरमाइश है, और मंजुला जी हमारी बहुत ही लॉयल लिसनर हैं. तो मंजुला जी थैंक यू सो मच, आप हमें कॉल करती हैं हर बार. आपके लिए ये गीत.

0: हाँ तो जैसा कि मैंने कहा, हमारे जाने का समय हो गया है और कल्याणी आपसे बातचीत करके बहुत ही अच्छा लगा। आशा है कि हम फिर से स्टूडियो में मिलेंगे और फिर से आपसे बहुत सारी बातें होंगी।
1: जी बिल्कुल, मैं भी आशा रखती हूँ।
0: और आपके फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट कि आप यहाँ पे एक सफल और खुशहाल ज़िंदगी आगे बनाएं।
1: थैंक यू।
0: क्यों ना हम एक और गीत सुने, क्योंकि आज मैं सोच रही थी कि फिरोज़ खान का कोई गाना सुनते हैं, क्योंकि उनका बर्थडे था 25th को, तो उसी से हम अपना ये कार्यक्रम आज का समाप्त करते हैं। तो सभी श्रोताओं से आपसे फिर से मुलाकात होगी। शुभ रात्रि।
2: शुभ रात्रि।

सारी जिंदगी करांगे मौज मस्ती, सारी जिंदगी करांगे मौज मस्ती, अखा लाइया सी यही कुछ सोच के नी, आपे पैरां ते कुहाड़ा मार बैठे, हुण जापदे तैनू लोच के नी, लाभ हीरे नू फटड़ कर सुट गई है, लाभ हीरे नू फटड़ कर सुट गई है, कैसा मारिया निशाना पोच के नी, उत्ते गमा दे ते इला तान्या दिया, खांदे मास ज्यों दे दा, नोच के नी। एक दुखी दिल की आवाज है मित्रों, ठूक है। जेकर तुहाडे नाल भी कोई इस तरह का हादसा वापरिया ना, कि तुसी भी किसे ते बहुत वड्डियां आसां लाईयां सी, ते ओह तुहाडियां आसां नूं चकना चूर करके किसे होर दे मोढे ते सिर तरी बैठे, बस फिर ओह सीन जां तां तुसी जाणदे हो ते जां तुहाडा रब जाणदा है।